मिलन गीत सिंगल चित्रपट संगीत रसा लता वालपुर के हांडट थी ए मुर्दू स्वीरी सुधु शब्द सा गीत रे जीवे दिन हैंगीम सुललित वो काला तुले सेमिंग बिरुत न मैं गीत ऐसु विच हित देने सिनेमा लोके मोहतक सेमिंग गलायन संगीत निहंड वार्न लता वालपुर के हांडिंग लोके मुर्दू लेस विरुत वेन हैंगी मुत्तुसामी के संगीत में गीत दिन रसे अतिशय सरलाई एत गीत गलपना उरिंग मुर्दू रिद्म सांसुम वर्णक सा पारण सिनेमा रसे गिन संगीत लता वालपुर के गायन में गीत दिन आलोक हुंगक विशेष आई सेमिंग सांसुम हदवृत लंगावेन हैंगी मग अद में गीते उबे दवसत सोंद पिनु सांसुम रसे गिनो लंका रेडियो सुललित वो खाला सुहरन नेक्स्ट लीड सुललित वो खाला फ्रॉम लता वालपोला

मीलन गीते दर्नम से पनस पाई काले सिंगल चित्रपट संगीत मानाराम सुंदक धर्मदास वालपुर के गमरु शब्द लता वालपुर के मुर्दु सुंद पिरनु हंडत एकतु ने पेमाला नेला गोता किए ने मे गीते पारना सिनेमा लोके टे ओबो अरगने नो मे गीते असुविते हितते इन्ने मल्लोलिं पिरनु उदयसनक सेमिंग गलायन संगीत नियंद वारन सा पारन काले सरल सेनियास संगीत में गीते टे दिन रसे अतिशय विशेष है सरल रिद्म अग्नि एक गीते टे वारन सेमिंग गलायन गमनक सा पनाय दशके संगीत रसे गिनन गीते धर्मदास सा लता वालपुर के हंड देख एक वेन पेम माला नीला गुत आन के नाट सोंद पिरनु सिनेमा मोहत कुर्त वेनु सांसु मुर्दु सा अतीते रसें पिरनु गीते लंका रेडियो इन ओबवित पेम माला नीला गुत गीते मीलंग होइट हरन वे नोकाय लीड क्लासिस फिल्म साइट श्रीलंका आइन स्टुक आउस तेम या नोनसेन हुंड पुम पुम पुम सिक फुल के फ्यूल उन एलिगेंस पेम माला नीला गुत के सुंगन फॉर्म धर्मदास वालपुल उन लता वालपुल मुसिकालिस वर्क वी आइन साठ फिल्म सेन दिस इज लांगसम रेफरेंस धर्मदास स्टीम ब्रिंग टीप उन रूह वेर एंड लता वालपुल आइन वॉइस लॉस्ट एंड पाब इन द फूड के मन साम सपन सी आइन एटमॉस्फेयर दी अन दी वामन गेफुलन गेफुलफुलन मोमेंट अलस फिल्म वेट एन ein lied die der magie der 50er jahre wieder lebendig macht und eine ruhige gefühlvolle eleganz singt yes by see by lanka radio pemmala nelagot